0: खल गई, तुझे खल गई, मेरी बेपरवाही खल गई, तो तरवा तू किस खेत की मूली है जरा पता।
1: दिल से ब्रेकिंग न्यूज़।